सयों रेडियो, हजारों रेडियो कर्मी र करोड़ों नेपाली को माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIM।

0: यको एनएसएफ अमेरिका द्वारा प्रमाणित फ्लोगार्ड ब्रांड साथ ही मार्बल का यूपीवीसी प्रोडक्ट हरू लेड फ्री यूवी रेसिस्टेंट रा हाई इंपैक्ट स्ट्रेंथ भाई को
1: सुरक्षा कर को साथ जीवन भर को

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले रातिको ठीक 9 बज्यो।